0: क्या तुम अपना गया दिन की रे आपने दिन के बारे में जानना चाहो तसो हो भले आश ज्योतिष दर पर ज्योतिष कार्यालय भरतपुर चितवन में
1: हमारा यहाँ वृंदावन बठे ज्योतिष विद्या पढ़बटी आएगा ज्योतिष विद्या का बारे में बहुत ही जानकारी भएका कति वर्ष अगाडी बठे ज्योतिष विद्या का बारे में जान्ने देश र परदेश में सम्मान र ख्याति पाएका ज्योतिष पण्डित लक्ष्मण सुवेदीले कम्प्युटर का माध्यम बठे चिना चिठा बनाउने रे चिठा भाग्य हेद्या घर बनाउने कि लेखा माटो हेद्या वास्तुशास्त्र का बारे में सब बताउने पृथ्वी को उद्धार गद्या रत्न रे जन्तर बीज लाउने जन्म कुण्डली में भएको दोष ग्रह को शांति विशेष धार्मिक रे बौद्धिक विधि बठे गद्या
0: सम्पर्क की लेखा ज्योतिष पण्डित लक्ष्मण सुवेदी ज्योतिष दर्पण ज्योतिष कार्यालय भरतपुर चितवन
1: फोन गद्दा की लेखा फोन नम्बर 9845-39-76-58 रे 9814-27-36-01 तमु फोन बठेलाई आफ्नो भाग्य हेर्न सकन्छौ आज संगीतमय पुराण लगाउनेक लेखालाई सम्झन सकन्छौ
2: अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ संस्कार र संस्कृतिको संवाहक सनातन रेडियो नेटवर्कमा कार्यक्रम ज्योतिष दर्पण।

आगे आगे भागू मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे आए।

मैं इम्पोर्टेड आशिक हूँ बट यू मैं लव क्या जाने, लंदन से अमेरिका तक मेरे कितने दीवाने, आई कम इंडिया फॉर यू डार्लिंग, तुम माने या न माने।